करी भगत करंते तिनके काज सवारता। दाल सीधा पनिया छादन निकाया, नाज मगो सत सिका, गौ बैस मगो लावेरी एक।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

दिब दिब भांत कर नहीं खर खर बिज राम राज जिन अंतर कपट विकार है ना रोए क्या कीज हर करता सब किस दान दा सिर रुग हद दीज जिन नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है।